तेरे मारो निरा मैं तो नहालाऊंगे दोले पर परे नवा फुम सिंफोगो हिवा ओ मुईसी और इधर हिरवा मोरो वो खला मोरो और आया वो दिवान तो मुईसी और नखुमा आरे के मौत हम के बाने के अनाल फंदिका ओ पी मो खला ओ मुड़ी वही यो नाट अनाल फंदिका मुड़ी ओ मिलाई से वही यो एलापो ओ कुरे हम हाँ वो थाने 5 horas 49 minutos.